0: असत है। हम लोग को कहने का है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो दुनिया असत्य कैसा होता है। वेदांत सूत्र में है ये विषय में पहली चर्चा की है कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन है जानवर से क्या अंतर, अंतर यही है जो कुत्ता जो है तिल भोगता और आता है पीता है बच्चा पैदा करता है और दो दिन बाद मर जाता है। आहार निद्रा व्यायाम सामान मनुष्य पशु में
1: So I wanna know, which way would you go? If I couldn't do it, if I didn't know, no you didn't know. I gave up my soul, the devil he owes me. Yeah. I gave up my soul, the devil he owes me. I gave up my soul, so I wanna know, which way would you go? If I couldn't do it, if I didn't know, no you didn't know. I gave up my soul, the devil he owes me.